second to

दो सौ रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं।

ठीक है, अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा,

Jesus Christ.

गया है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। सीखा आज का चिंतन। आइए सुने भक्ति रचना।

0: घुमा घुमा रहे हैं मगर दुरुस्त नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के अंधार में जब तक न लगाया जाए वो
1: को अलौकिक संसार में ले जाती है।

संदर्भ में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम है श्री

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम है श्री रामचरित मानस गान भाग 231। सुबह 45 मिनट पर संगीत सरित कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक एस एल कंदारा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। पुराने फिल्म गीत सुनेगा भूले बिस्तर गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से हम हैरान प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 पर। आज 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार इंद्र राजा पर। पिटारे के अंतर्गत हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा। पर मंदाकिनी जोशी का प्रस्तुत

आपको सुनवाएंगे। दो बज कर 15 मिनट पर ये पुनः प्रसारण होगा। दिन में 2 बज कर 30 मिनट पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे। इटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे सुनेगा उन दिनों की बात है। लेखक अरुण शेखर प्रस्तुति रमेश गोखले जी। छायाधीत कार्यक्रम शाम 5 बजे ये पुनः प्रसारण होगा। वैसे आप सुनते हैं रात 10 बजे कार्यक्रम छायाधीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन का प्रसारण होगा। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। और साथियों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 7 बजे से।

एक कमाओ बीवी का लेखन मनोहर वर्मा का है, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनेगा रात 9 बजे से। रात 10 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। और श्री राम से प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है,

सुन रहे हैं विविध भारती, शिवाजी की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए श्री राम चरित मानस।

में विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूँ जिसका कोई स्वामी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहाँ आया हूँ। आपने मेरी भिखारी को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोस्त को गुण के रूप में स्वीकार कर लिया।

0: क्षेत्र में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एस एल संगारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और स्वागत है पंडित एस एल संगारा जी का, तबला संगीतकार श्री संतोष मिश्र जी का भी। पंडित जी आज राग राजेश्वरी की बारी है।
2: अच्छा,
1: राजेश्वरी की चर्चा में इस राग के बारे में क्या हमें बताएंगे आप, इसका आरोह अवरोह और इसकी खूबसूरती?
2: जी, राजेश्वरी एक बहुत ही मधुर प्रकृति का राग है और बड़े रागों में भी इसकी गणना होती है, छोटे रागों में भी। छोटे रागों से मतलब लाइट अंग भी इसका बहुत अच्छा है जो सुगम संगीत में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। इसके फिल्मों में भी कई गाने बने इस राग से। क्लासिकल म्यूजिक में राग राजेश्वरी के लिए मैं आपको इसके आरोह अवरोह बजा के स्पष्ट करता हूँ, फिर एक छोटी सी रचना रूप अपने सुनाता हूँ।

शुद्ध कंचन बहुत अल्प, फिर भगवत शुद्ध निखार कोमल और फिर सात आठ शतक का ये आरोह हुआ। इसका अवरोह ऐसा है, सात शतक का था, फिर कोमल निखार, फिर भगवत शुद्ध, फिर अल्प पंचम लगता है, कभी कभी ज्यादा नहीं लगता, प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत बहुत कम, और मध्यम प्रोमिनेंट है, शुद्ध मध्यम, गंधार और रेखा। और इसका जो

सुंदर सी बंदी को सुनने के बाद राजेश्वरी राज पर आधारित गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो मन्नत

0: रविंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन दसाई। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यही समाप्त हो रही है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपसे कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायोलिन का विहंगम संसार। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एस एस भंडारा। आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने। तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: भारती के संग्रहालय से प्राप्त

के राष्ट्रीय सेवा आदेश की तरीली धड़कन मूल्य विश्व गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

I want to

0: मुकेश की आवाज में। लिखा था इसे भरत व्यास ने, फिल्म बनाई थी कल्याण जी वीर जी शाह ने। अगर आपका पेट है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन अगर आप टाइम पे नहीं सो खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: उनकी शो शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम भूरी दिखने की। इस कार्यक्रम के बाकी गीत छोटे से अंतराल के बाद।

प्रसन्न कथा आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में। शब्द का थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर। 1778 में मेरे पिताजी सुभाष अमरापुरकर एक

जी राजेंद्र कृष्ण के संगीतकार थे मदन मोहन। इसी के साथ आज का भूलो रिश्ते गीत कार्यक्रम समाप्त होता है।

Bu çok güzel bir şey.

फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और यशुराज की आवाजों में। शाहिद गांधी के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारा ही प्यार के

0: या सभी गाने सुने थे, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन इतनी समय की थी।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट देने को कर नहीं दिया। नसीर ने कहा वो थे तो मैं हूँ ना बासू, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही

Thank you.

मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार

सरकारों और मादक पदार्थों के रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों के तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयास

वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आवाज़ लोकतांत्रिक मूल्यों को श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आवास काल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।

निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17

चीज भूकंप या संख्या है वहां।

Ephesians chapter 2. Many of the groups

मजबूर वर्ग ने

दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया।

0: सुबह मैंने भारतीय लिखते हैं।
1: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थी। यदि उन्हें

0: संतानों ने देवी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे

वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलू। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में विपिन चंद्र पाल के सम्मुख व

शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए।

किसी जमीन पर बौंधी बॉल निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर

से उनके बोले गए कार्यक्रम के संबंध में चर्चा हुई, उनका एक सहयोग आपस की गई थी ताकि वो समय में साथ साथ में काम करने से कार्यक्रम नागरिक के माध्यम से थोड़ा वर्ष से आपका बी एल ए टू का सहयोग है अच्छा से एक मतदान निर्माण करने का सहयोग आगे के लिए तो वो भी आया।

Grazie a tutti.

যদি মেঘা কার্যক্রম ছোট ব্রেক কে বাদ

0: रानी कलम का गाना आप सुन रहे थे रेखा भारद्वाज की आवाज में। पुनीत शर्मा के बोल थे संजीव श्रीवास्तव का संगीत था। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। प्रतिलिवर इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ

0: तीन चीजें काम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों कम हो जाए।
1: देश की बहुत सारी बीमारियों पर
0: अगर आप तो एक्टिविटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है और अगर हम टाइम पे ना सोए 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको
1: डॉक्टर गौरव मेहता की बातें उनकी जोन शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। दोस्तों विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र लोग। आज 26 जून है दोस्तों, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसानियत को हर हाल में जिंदा रखना है। आज पूरी दुनिया यूनाइटेड

थी ताकि दुनिया भर में उन लोगों की आवाज सुनी जा सके जिन्होंने किसी न किसी रूप में मानसिक या शारीरिक यातनाएं झेली है। ये दिन सिर्फ दर्द को याद करने का दिन नहीं बल्कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनके घावों को भरने का संकल्प लेने का दिन भी है। दोस्तों, इस सभ्य समाज में किसी भी इंसान को प्रताड़ित करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हो रहा है, ज्यादती हो रही है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए बल्कि उनकी ताकत बनना चाहिए। तो आइए, जगद्धात्री की ओर से हम आपसे ये आह्वान कर रहे हैं कि हम सब अपने से वादा करें, खुद से वादा करें कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ नफरत की जगह केवल हमदर्दी हो, सम्मान हो और हो अपना एक दूसरे के साथ एक दूसरे का साथ बनाए रखेंगे। सुनिए ये गाना, कहीं ये साथ की बात तो नहीं कर रहा है, फिल्म है तमाशा, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज़ में, तमिल के बोल, ए आर रहमान का संगीत है।

भी मिल जाता था और मैं बहुत विरोध किया करता था। तो स्वाभाविक रूप से मेरे जंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चलते थे जंग मेरी प्रमुख।

Când venite gurușor de semi orice, de

बढ़ रही थी, दो जवान लोग अगर दूरी और इस बदलते साथ

समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्र लोग। दोस्तों, नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बीड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन देती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा व्यक्ति बन जाता है पता नहीं चलता। उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस व्यक्ति के कारण खोया है, लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो और जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें लाने का दिन भी है। विश्व नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आज की जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आस पास कुछ संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए, आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत अच्छी है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचाने, अपने सपनों को जिए और नशे को ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था। आज के दिन नशा मुक्ति के लिए और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए।

0: घुमा रहे हैं मगर बड़ा कमजोर देखो वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंभार में जब तक नहीं लगाया जाए वो आप कह सकते हैं कि
1: श्रोताओं को सुरों की अलौकिक संस्था में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार

कहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्री पुरानी का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता लगे मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1 2 3 0 0 1
1: आपको निमंत्रण देता हूँ।

की बजाय जीत आया। कुमार साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज संगीतकार कयाम। पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया तो जैसे आयुष के साथ एक आवाज़ है बब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना तो आवाज़ तो यही है जो चाहिए कुमार साहब को। तो मिसाल गा रहे हैं आई जंजीर की धमकान खुद आकर, तो इसमें जो रिदम है

उन्नीस सौ सैतालीस को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेगू, जिसके अन्यापुरम नामक गाँव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेगू। हालांकि जब इलैयाराजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामास्वामी ने ज्ञान थेगू से बदल कर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें राजैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैयाराजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर शहर घूमती और अपनी

कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैया राजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में

अन्य चीजें संगीत जीने का मौका आया और इसके शासन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नचिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि

जाए उनके इतिहासी ने मृत्यु तन नामक सुनवाई और इसी वरसाई विजन थी किलन थे 1982 में कोजू कुवटू नामक सुनवाई क्योंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इंदिरा नगर की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें

2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने वाले संगीतकार ए आर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें

तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इंदिरा राजा के प्रशंसक मौजूद है। अगर हम ये कहेंगे कि इंदिरा राजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड है। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पद्मश्री राजा के लिए और 2016 में तरई थपतई के लिए, ये 5 नेशनल अवार्ड है। इसके अलावा फिल्मफेयर अवार्ड, केरला स्टेट अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड, नंदी अवार्ड, इस लंबी फहरिस्त है इंदिरा राजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे

तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में चले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में रहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए

जिनके उनके तीन संतानें हैं कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलैयाराजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलैयाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते हैं, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने

的能力也很温柔，让他和自己关系也本来的。而这是很温柔的心，我们的身体下加入一个大黑。这样的人，up to 1,500 people who8,600 गाने बनाए हैं, तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलिया राजा का है और इसकी

समर्पण की ये वो दौर था जब कई बार मणि रत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने, निर्देशन मणि रत्नम का था और ये मणि रत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलगु में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणि रत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि

सबसे बड़े और पहले कॉमिक को रिकॉर्ड किया था, जिसे उन्होंने सिम्पसन नंबर वन का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जानी मानी कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के

हजार बारह में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की

2012 के समर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड थे। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। नौ भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में

0: के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन लाइव मन की बात संगीत स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट aakashwani.gov.in पर नया भारत आकाशवाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए

Cristo y la Santa Madre.

0: कौन जाएगा? मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री से मन की बात की तो पता नोट कीजिए, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1 1 2 3।

आज इस्लामिक चैलेंज से उभरी नहीं यानी मुहर्रम की

ਉੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਨਮਸਕਾਰ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ

लिखा जाता है। आज का भी इतिहास का वो पन्ना है जो हमें किसी त्योहार की तरह खुशियाँ मनाना नहीं बल्कि हक और सच्चाई के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना सिखाता है। दिन है उस महान शहादत का जिसने दुनिया को इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दिया। साथियों, जब भी मुहर्रम का महीना आता

से हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के साथ उनके परिवार

उन्होंने कहा कि सिद्ध कर सकता है लेकिन जीवन के साथ जो करना चाहता। तीन दिनों तक इमाम हुसैन और उनके परिवार का पानी बंद कर दिया गया। अच्छी धूप भूख को इमाम हुसैन और उनके साथियों को बेहद मसूद शहर मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, शाह अब्द हुसैन बादशाह अब्द हुसैन दीन अब्द हुसैन दीन पनाह अब्द हुसैन सर बाज न दस्त दस्त के यजीज हम

बच्चों के बीच नहीं थी, ये जंग थी जुल्म के खिलाफ और इंसान के हक में। आज के दौर में मुहर्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपसी भाईचारा

प्रतीक मिसाल हुसैनी ब्राह्मण में भी देखने को मिले, जैसे उर्वशी ने जबरा के मैदान में इमाम हुसैन का साथ दिया। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी इमाम हुसैन की शान में एक पूरा नाटक लिखा और कहा था कि हुसैन की कुर्बानी सिर्फ कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। आज के दिन हमें अपने दिलों से नफरत को मिटाकर एक दूसरे की मदद करने और सच का साथ देने का संकल्प करना चाहिए।

तो मुहर्रम हमें ये सिखाती है कितने भी मुश्किल से अपने आदर्शों और अच्छाई का रास्ता हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

Devam edeceğiz. Hayır, devam edeceğiz. Şimdi

भर में पहुंच करके पीड़ितों और बचे हुए लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करना है ताकि यातना जैसे अमानवीय अपराध के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को इसे मनाने की आधिकारिक घोषणा की और अत्याचार के शिकार लोगों की मदद

विरोध सैन्य सम्मेलन लागू हुआ था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यातना को पूरी गैर कानूनी और मानवता के खिलाफ अपराध मानता है। दुनिया भर में

ऊपर निर्दय और क्रूरता का सामना किया है। यातना सिर्फ एक अपराध नहीं है दोस्तों, बल्कि ये इंसान की आत्मा और उसके गरिमा पर सबसे बड़ा हमला होता है। इस दिन का मुख्य फोकस है कि पीड़ितों को न केवल कानूनी न्याय बल्कि उनके पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन और मानसिक स्वास्थ्य को कानून अपनी जगह काम करता है और लेकिन समाज के तौर पर हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है। अगर आपके आस पास कोई ऐसे व्यक्ति जो किसी भी तरह के घरेलू सामाजिक सामाजिक उत्पीड़न से गुजर रहा है तो उसे अक्सर मत छोड़े। आपका एक छोटा सा सहारा, एक सहानुभूति भरा शब्द किसी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जीने की हिम्मत दे सकते हैं। आज के दिन हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का संकल्प लें जहाँ डर नहीं, सम्मान है, जहाँ क्रूरता नहीं,

वचन उन बेगुनाह लोगों को याद करने और श्राप देने का है जिन्होंने जुल्म बेरहमी और मानसिक यातनाओं को सुना है।

रिकॉर्ड करने का एक अनोखा तरीका है। उन्होंने उस जमाने से सीख लिया जिसमें पूरे शास्त्रीय गाने को समझना सिखाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी पता है दोस्तों? गाना खत्म होते ही वो बड़े रौब से अंग्रेजी में बोलते माई नेम इज गौहरचंद, ताकि लंदन में रिकॉर्ड बनाने वालों को पता चले कि ये आवाज महान कलाकारी है और किस भारतीय कलाकार की है। ये एक ऐसी आवाज थी दोस्तों जिसने भारत में संगीत की रिकॉर्डिंग का इतिहास लिखा। भारत की सबसे पहली रिकॉर्डिंग सुपरस्टार और ग्रामोफोन गायक गौहरचंद। गौहरचंद की जिंदगी के कुछ दिन उसने कहानियां कहीं भी कहा जैसी आलिशान और उतार चढ़ाव से भरी थी। उनके बारे में अगर हम बातें करें तो भी उस दौर में जहां आम लोगों की कमाई बहुत कम थी, गौहरचंद एक महफिल या रिकॉर्डिंग के लिए 1,000 से 3,000 रुपए तक की फीस लेते थे। आज के हिसाब से ये रकम लाखों करोड़ों रुपए के बराबर है, जिसने उन्हें अपने जमाने की सबसे अमीर और पहली करोड़पति महिला सिंगर बना दिया था। गौहरचंद की लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी दोस्तों, उनकी तस्वीरें ऑस्ट्रिया में बनने वाले माचिस के डिब्बों और पोस्ट कार्ड पर भी छपती थी। वे उस दौर की पहली ऐसी भारतीय कलाकार थी जिन्हें इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मास मीडिया कवरेज मिला। जब उन्हें किसी दूर राज्य के राजा के दरबार में गाने के लिए बुलाया जाता था तो वो अपने साथ अपने पूरे लाव लश्कर और स्टाफ को ले जाने की पूरी ट्रेन बुक कर लेती थी।

जो हम म्यूजिकल प्लेलिस्ट देखते हैं ना, शायद वो होती ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज जन्मदिन है उस महान कलाकार का जिन्होंने संगीत को राज दरबारों से निकाल कर आम लोगों के ग्रामोफोन तक पहुँचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली सेलिब्रिटी गायिका, गायक की और फनकार गौहर जान की। साल था 1900। उन्होंने लगभग

और वो कोलकाता के लड़कों को महंगी डिग्रियों में पहुंचे थे। भले ही उन्होंने और उनके माँ ने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन उनका काफी अपने जीवन के अंतिम 18 महीनों में वे मैसूर के राज दरबार में एक कोच म्यूजिशियन के तौर पर रहे और 17 जनवरी 1930 को लगभग दुनिया को उन्होंने अलविदा कर दिया।

मिटने लड़ने हैं। यहाँ दोस्तों, नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलता, वो पूरे परिवार को उजाड़ देता है। आज हमारे देश का युवा इसकी चपेट में बहुत ही तेजी से आ रहा है। लोग शुरुआत में तो शौक या दोस्तों के शुरू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो खुद किसी दलदल में फंसते चले जाते हैं और ये दलदल हमें निकल देता है। सिगरेट शराब से शुरू हुआ ये सफर ड्रग्स तक पहुँच जाता है। आंकड़े बताते हैं दोस्तों कि दुनिया भर में करोड़ों युवा किसी न किसी के रूप में नशे के शिकार हैं। ये सिर्फ स्वास्थ्य का नुकसान नहीं है दोस्तों, ये देश के भविष्य का भी नुकसान है। तो दोस्तों, इससे बचने का बेहतर उपाय है कि इलाज की कगार तक पहुंचने के बाद अपने आप को इससे हम दूर रखें। और अगर आपके आस पास कोई अचानक से गुमसुम रहने लगे या उसका व्यवहार बदले तो उस पर ध्यान जरूर दें। माता पिता को अपने बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए इस बारे में। उन्हें डांटने के बजाय उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। और अगर कोई इस लत का शिकार हो चुका है तो शर्माए नहीं, तुरंत डॉक्टर या नशा मुक्ति केंद्र की मदद लें। भारत सरकार का हेल्पलाइन नंबर 1444 हमेशा मदद के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज के इस दिन हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम नशे को ना कहेंगे और गंदगी को हाँ कहेंगे। खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को बचाएं और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। दोस्तों, इस अंधेरे के बाद उजाला भी है, इस बात को समझें।

किसी भी प्रकार का हो, ये शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान ही पहुंचाते हैं। आज के दिनों में कई लोग एक तरह की दवाओं का सेवन भी नशे के तौर पर करते हैं, जो कि काफी खतरनाक होता है। नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष आज के दिन छब्बीस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार नशे की लत लग जाए और स्थिति गंभीर हो जाए तो उसकी आदत छुड़ाने के लिए उचित ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, और ये ट्रीटमेंट कई तरह से होते हैं दोस्तों, जैसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ऑल्टरनेटिव थेरेपी या फिर ड्रग से भी उसका उपचार किया जाता है। लेकिन दिक्कत यही है दोस्तों, हम इन सबों से अलग अपने आप को इस नशे की दुनिया में ना सोचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। आपको बताना चाहती हूँ, आपको मोहम्मद जी की

तो आप बात करते हैं आज के बेहद खास दिन की, जिनकी आवाज सीधे दिल में उतर जाती है, यानी हमारी अपनी श्रेया घोषाल। श्रेया जी का हर एक गाना उत्सव है, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका राज्य के ओहियो के गवर्नर ने उनके संगीत के प्रति सम्मान में 26 जून यानी आज के दिन को आधिकारिक तौर पर श्रेया घोषाल दिवस के रूप में घोषित किया था। आज इस खास दिवस पर हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके बारे में कुछ बातें साझा करते हैं आपके साथ। साल 2020

के अनगिनत भाषाओं में गाकर उन्होंने साबित किया कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती। उनकी आवाज में वो जादू है जो हर उदास दिल को सुकून से भर देता है। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने के बाद हर उस दौर के उभरते हुए सिंगर के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके साथ ही उनका रियाज और संगीत की सचिन की शक्ति उन्हें सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, आज के घोषणा दिवस पर हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और उनकी मखमली आवाज हमारे जीवन में और जीवन को ऐसे ही महकाती रहे और सुनते हैं।

Thank you.

0: और कुछ सुझाव देंगे। गुरु मुझ पर पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1100
0: आपको समर्थन देता हूँ। मेरे मन

1.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेद से प्रगत भारती केंद्र और अब आइए देखते हैं अपने विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से और संध्या कार्यक्रम

साल बड़ा भाई जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा टूटा और करीब 3 पतंग का भी मजा आ गया। एक और छोटा लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चक्री जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मनवाड़े को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और छोटा है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी ने पीने के नहीं बढ़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और छोटा है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम निकले हैं और कल ही बारिश हुई है। उसके अलावा एक और छोटा पतंग की बात पर लिखती है कि मेरे भाई की बोतल को फोड़ कर पीस कर भून करके उसके मजा पीसते थे और मैं पतंग को उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लकाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे छोटा होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आपने भी कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और छोटा है जो लिख रहे हैं कि आज की इमारत पकड़ कर मैं फ्लैश बैक में जा रहा हूँ, मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूना वाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल लिए और भीगते हुए दोनों घाटों पर चले गए। वहां का पता था नर्सरी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा आसमां का पता हो न जमीन का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई। बात एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहाँ पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहाँ कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मैगजीन तक जाती थी और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करेंगे या बारिश के जरिए। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही है कि क्या बोलेंगे बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता है जो बारिश के इंतजार में है और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बाकी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हो और उनके कमेंट आते ही होंगे तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ जो बहुत ही शू

पकड़ जाता है शंकर जी ने दुष्ट के साथ खूब उड़ाया करता था। जो छोटे छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो सूरत गुजरात को है, वो भी इसी तरह पतंगबाज जी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज है कि किसान वहाँ भी सभी से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना ही एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग चक्कर आती थी छत पर तो जल्दी से उठा कर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में जगह जगह कुछ बच्चे पतंग उड़ाते थे और खास त्योहारों पर उड़ाते थे। बचपन की याद ये है कि दो पैसे में चार पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती है कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा सकती है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है वो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पीली से लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे एक चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डरता था। जो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई

लगभग जबक तो आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं। और इसके अलावा एक छोटा है जो आज रपट जाए तो हमें लौटाइए गाने का जिक्र कर रहे हैं, ये उनके जहन में गूंज रहा है गाना लगभग जबक तो आर्य बदरवा। इसके अलावा एक छोटा के जहन में गूंज रहा है सिंकी की शर्माई की, एक और छोटा है जिनके जहन में आज लपट जाए गूंज रहा है कि किसी के जहन में सुरमई अक्षियों में लंबना इतना भी जाए। देखिए कितने तरह के गाने

अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों दिनों से निकला रेंजियन के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो अलकान या परेशान,

और उससे पहुंच चुका हूँ। मुझे उसको पहले कहें कि बचपन में मान जी पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, बराठी में खड़ कहते हैं, उसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा उसके पहले लिख कहते हैं कि कहा गया ये कमेंट, एक चीज कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक छोटा लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियाँ खाई जाती है, ये चाहे संक्रांति को याद करें, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें याद की हैं। और इसके अलावा और जो बहुत नीचे की कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो उनमें कई छोटा ऐसे हैं जिन्होंने अब जैसे ये छोटा इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर दिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और छोटा एक छोटा है जो लिखते हैं कि मैंने हाल ही गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई है, 15 फीट ऊंची छत से गिर कर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो हो खतरनाक बात है। एक छोटा लिख रहे हैं कि सर 60 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चौथियाँ एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। अब तक कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग एक घंटे तक उड़ाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई ये छोटा उनकी गलती। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत

और श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीम वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और है जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद बहरा पर चिल्लाएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेड़ से लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं।

vous votre courant, chaque fois que vous décidez, famille votre courant. Pour son lit, vous mettez du Facebook à l'heure, parce que si vous avez un peu de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, que vous n'avez pas de boulain, रियली इस पर की जाए एवं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हो लेकिन हम इन सभी लोगों को आराम से बैठकर करेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लिस्ट उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट के बहुत बहुत शुक्रिया।

Seva. One Day Mataram. इस वर्षा की 150वीं वर्षगांठ के कृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस हिंदी अनुवाद

होने लगा। बदलाव में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी।

0: चाहे सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा

वैभव इतिहास संस्कृति का गौरव किया, तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,

0: सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
1: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थी। यही उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूँ। वंदे मातरम

के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पांडलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख

कार्यक्रम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पाटिलकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय।

लुक तो बहुत मेक बन रहा, बड़ा प्यारा शरीर। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नशे में का वो जो तो मैं हूँ ना बासु, और शाहरुख ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही जिसका पिता रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।

प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। दिनेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक टीम बना ली, क्योंकि इस टीम को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी।

0: ज्यादा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: और मैं बहुत विमोद किया करता था, तो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर। तो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बात का व्यंग बोल लेते हैं, ये मुझे मजे की बात है कि बाद में चलते थे व्यंग मेरी प्रमुख
0: भूमिका। आज के मेहमान

0: que te estoy llamando, que es muy bien, y a ver, en el
1: Life on a

देखिए मंदिर ये कहा कि भारत के सचिन समय में रेलवे को लेकर सरकार वहां के लोगों के

Actually, that would be

0: शब्दों पे लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो दिनों की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के बीच सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है। तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी और हमारा इंतजार हुआ खत्म। ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है शीला जी?
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल सब।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता
0: है। गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?

0: सुनीता जी आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ।
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप?
1: जी हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरमेंट में कर रही हूँ अब।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप योगा करती हैं? योग से जुड़ी हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी हाँ जी हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और 3-4 आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ, तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही है, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार के साथ खुशहाल है।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदी फिल्म का है जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुना है और हम

0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: हाँ जी मैम।
0: पूनम जी क्या करती है जिंदगी में?
1: तो मैडम बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का ख्याल रखती है आप, है ना?
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक है आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना, कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। ये कला जो होती है ना, अद्भुत है ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी लुधियाना की क्या हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बारिश होते अच्छी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है, तो चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक प्रकाश फिल्म का गाना है, वो भी देवल का, मतलब नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का।

0: भी मजे में है और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए और भी खुश हो गए है ना।
1: हम भी बहुत खुश हो गए, एक और लग गया इसमें से।
0: आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी जैसे घर पे रहते घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं?

menggati dia. Jadi kita feel gunung-gunung kita

0: ऐसे ही गाते हुए बुलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी।
0: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कोई भी सुना दीजिए।

0: हेलो सहेली, हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सईद देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो ऐसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, लायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है, पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी।
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई है, तो कौन सा संगीत का प्रकार है? आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी, मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउस वाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ है, हम तो सिर्फ हाउस वाइफ है, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई है कि आप पहले हाउस वाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई है और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियाँ हैं, अन्य सखियाँ, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउस वाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे,

0: हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं करती थी और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी साथियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी उस समय अपने लिए खुद के लिए अवश्य निकालें और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें, भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम एक दो घंटा अपने लिए खुद के टैलेंट के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती है।
1: तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
0: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में जब मैं जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
1: ये बहुत सही बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाकर बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
0: जी जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया।

ಸಂದೇಹ ಅಂಗವಾಗಿ

0: फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी पटल पर हेमल कथा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गडचिरोली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी पटल पर हेमल कथा में है वहाँ पे मैं काम करती हूँ। और हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये हमने पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
0: जी
1: आप क्या काम करती हैं वहाँ पर? यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
0: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने।
1: मैं प्रकाश बाबा की ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: कैसा लग रहा है आपको वहाँ जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, हम अपनी खुशी का काम करते हैं तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं ज़रूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज़्यादा भी दिया जाता है, वो शिक्षा ज़्यादा दी जाती है।

प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नए नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छी बात है।

0: और सखी सहेली एक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ तो विवेक भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति दे देना, ये प्रार्थना गीत बहुत पसंद।

क्योंकि यह जीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मैंने हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। शुरुआत हो आपके पसंद का ये गीत।

0: करती हैं जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी जी
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है, क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: चलिए, ये मैंने कहा ना आपकी खुशी आपकी आवाज

0: कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जो संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज

0: हेलो सहेली, कैसे हो?
1: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
0: मंजू
1: मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
0: हरियाणा हिसार से।
1: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी, क्या करती हैं आप?
0: मेरा सिलाई का काम है।
1: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते करते रेडियो सुनती है।
0: हाँ जी।
1: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
0: मीत भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे अच्छे लगते हैं।
1: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग करती हैं, व्यायाम करती हैं?
0: थोड़ा बहुत बच्चे कर लेते हैं सुबह।
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जी कन्यादान टिकट का है, लिखे जो खत तुझे और फूल बन गए।
1: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: शैली में फोन लगाया है?
1: बिहार पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत से जिए, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से देर रात भी सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही है, यानी जो कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत, बस से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोर अवस्था से सबसे।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो बस बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उसका कोर्स किया, और तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूँ मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी बात है आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया और मैं अपना वजन कर गया है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसकी बदौलत आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों न हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब हम योग करते हैं तो हमारा देखा देखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आपको मजा आती है?
1: तो लंबे हाथ का प्यार गिरा दिखा दुनिया में, रघुवीर की आवाज़ में
0: जी सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सेक्शनों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सेक्शनों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी संख्या से फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़ेकर, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिन की सुबह। हेलो सहेली।

tipo, mas tu, quantos

enseñanza.

तुम लोग आ मैडम दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने क्या क्या की कैप्स पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी तो टोपियाँ तो थी पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते। तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जज का तक प्रेम पत्र पहुँचा देता था। ये उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, इससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था हुई है। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की

माहौल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे। खरीद को करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था।

विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ वहाँ कन्याएं थी और हिंदी की क्लास में तो बहुत आया थे, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार को एक यानी कि जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते थे इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे, अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छोड़ने इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया

कहते राधे करती है। नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इसलिए के कन्या श्री मानक को अच्छी लग रही थी। जी हाँ, अच्छी लग रही थी। सुंदर सावली पड़ी, चेहरा से बीतू मोरनी की चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर नीतिकालीन कवियों की नायिका की लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी सहेली के साथ रहती थी। मौसम मगर

तेरे परिवारिक के दिल में मुशायरे होने लगे। कवि सम्मेलनों की घड़ी लग गई। इस मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन से घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई रहने खाने के घर सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं। इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय ही साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिटिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता। उनके संघर्ष की महागाथा का बयान कर रहा होगा। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ

खून पत्ती बनाने शेरों शायरी लिखने का फैशन था। कार की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कागजों से सज होती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार खरीदने भेजने में

दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्यों की सुनहरी। श्रीमान के मन में विचार आया, यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हेलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सोच नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव नहीं था और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर विधेय शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर करते। वो तो अज्ञेय भूमि मुक्ति बोध दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे, इसलिए कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना इस उधेड़ बुनने में सकती।

कुंवर की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस्ट तक बैठी थी। मुझे कदम कदम पर चौराहे में

कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जब की तक बैठी थी। मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हुए बारी फैलाए, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हुए

God gave a holiday, I thought he was

ही रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। सुभाष ने उसको लगा कि यह अवसर भी हो सकता है सुशील वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है की कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो, ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, तो अभी तक लगे पड़े थे। इससे लड़कियां भी पीछे नहीं थी कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए और वो काम दिया। ये तो हुई माहौल थी। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग किनोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहाँ दिखाई देता है। इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीख

शख्स को कुछ रिवाई से 30 ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था और उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिखेंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही है। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आता था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी थी। हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठ कर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुशील भाई की झलक मिल गई। आप सुनवामत के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहे। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का जवाब था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही है, 4 डिग्री तापमान है। पसीना ऐसे थूक रहा था जैसे मई जून की दोपहर हो। इन भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटा कर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ

का मौका मिले पता नहीं। फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे आगे बढ़ गए। सांप के गले से कहा, हेलो। वो बोली, इसी करके जी कुछ नहीं है, हैप्पी नहीं है। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्गी थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान, और बदले में थैंक यू मिल गया था। कुछ कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान उन लम्हों को अभी तक किताबों में

है कि हुआ इसलिए अपील कि जख्म क्यों न खाया हुआ पत्थरों को बनाया मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाथरूम में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिनों का हम दूरियां हो गई और इस गजल के साथ साथ मेरी गली रेडियो स्टेशन का भी दखल है।

Sí.

को छू छू पाइए, मेरी आंखों की बीचें जरा असर पड़ जाइए। सता मुश्किल ही होती मगर इतनी सजा कैसी,

रहे हैं, बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस मुझे वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरे खाते अपनी इज्जत का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूँ ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार

जिसका कार्यक्रम छाया रूप में हम बात कर रहे हैं रोशनी की और मनाने की। और अगर सूरज में डूब जाए ये कारण पता न हो तो मनाना तो जरूरी होता है।

भी बोल रह ही जाता है। रूट मिले न मानने के सिलसिले में कई सारे गिले टुकड़े दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रोजे दिल को देखकर सड़कन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम की, मैं आपके नाम की खुशबू लिए सोती हूँ सांसों में।

दूसरे को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, ये उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम नहीं आता। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए, इसीलिए तो कहा है कलम में, ये जो रूठे हैं लबासी, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए, मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए, जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रोकना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदायी। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई बनाए

पहला गीत हम लाए।

ni o

भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार।

0: कई बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड बाय योर डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारी पर
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत हो गए तो

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है आनंद।

0: होता है, कष्ट होती है, खून से है, क्यों भूगा, इसलिए सुखी लगना, जख्म क्यों में खाया हूँ, पत्थरों को है अंदर होकर पड़ा हो रहा। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बातों में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिनों का गम दूरियां हो गई, और इस गजल के साथ साथ मेरी गली और रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी, इस मंगलवार शनिवार के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे हम लोग ज्यादा, हम इस खूबियों में रात में काम करते हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने से मुश्किल, क्योंकि वो

जमाने भर के गम या तेरा गम, ये गम होगा किसी के पास आप सुन रहे थे सविता खानन की आवाज में, और अब सुनते हैं गजल जगजीत सिंह की आवाज।

सुविधा पास लेके लिखी हुई बेहद खूबसूरत सी गजल हम आपको सुनवा रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। आज ये गजल हम पूरा नहीं सुना सके आपको, सुबह आज बस इतना ही और इसके साथ इजाजत दीजिए प्रोग्राम से। लोकरण कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सुगम भेज आते हैं।
1: देखिए माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए जो सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 1-2-3-4-5-8।
0: आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपको मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

शर्मा के स्वर में भी आप सुन रहे थे ये अंबिका लोकगीत। श्रोताओं, इसका घोषणा की समृद्ध और मधुर लोकगीतों के लिए जानी जाती है। इन गीतों में ढोल, सितार, हारमोनियम और बांसुरी जैसे क्लासिक वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो इनके मिठास को कुछ और बढ़ा देते हैं। और आपको बता दें, अंबिका भाषा मुख्य रूप से बिहार के अंग क्षेत्र भागलपुर, मणिपुर और झारखंड के लोकरंग कार्यक्रम अब

इस गाने को रोमी ने, मुकुंद भलेराव ने इस गाने को लिखा था श्रोताओं, और मेहुल दास ने संगीत दिया था। आप सुन रहे हैं सोनू संगीत का प्रोग्राम विविध भारती।

सोचते थे चाहिए ये नाम था फिल्म का जिस तरह नवीन ने आपको सुनवाया। जायसर सानी को साल बेदा बाग देवी और मोदन पॉल ने

0: Cricket e Roman se afastam de que Hulk e Luther. Monks, não pode estar.
1: आसमान में सिर उठा दो, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले लो,

Grazie a tutti.

शुरुआत लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नेता हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नेते पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है, देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए

फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

छोड़ के यहाँ पे हादसा होता रहा है। आज हमेशा से हमने प्रशासन को, यहाँ के बालों गाँव के पब्लिक ने प्रशासन

आकाशवाणी के रांची केंद्र से अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी जन फेसबुक पर भी विभिन्न

10 community members get

को सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है वी एल रावल, संगीतकार है सोनिक ओमी।

0: सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इंफेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ कंसल्टेंसी या डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर

0: फैटी लिवर इंफेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ रेसिडेंसी या डॉक्टर. ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम होगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव ने.
1: अगर आप टाइम से नहीं तो खा के तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: जय माला कार्यक्रम में अब सुनिए अगला और अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में. गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, पर है राजेश रोशन की, संघ का नाम है.

हर देश से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम इंद्रधनुष के तहत गुलदस्ता में आज स्पेशल खिदमत है कुछ चुनिंदा गैर फिल्म गजलें। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर वक्त का रोना तो बेकार का रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। सामने कराऊं लीजिए समाज फरमाइए जगदीश सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में यह गजल। शायर है निदा पाटिल, मौसिकार जगदीश सिंह।

शहर रखते हैं दिन रात का हिसाब, सबके नसीब में है कहाँ चौधरी की रात। शायर सईद राही का कलाम लीजिए समाज पर।

की आखिरी गजल समाप्त कीजिए गुलुकारा इंद्रानी रिद्धि की आवाज में। सलाम है पटेल सिपाही का।

0: मजबूरी है। जब वे पांचों देवियां यहाँ आ समझती है तब बताइए मैं क्या करूँगी। अच्छा आपसे भी तो इनकार करते नहीं बनता, क्योंकि हमारे साथ चलने के लिए तो आपके खुद के मुँह में पानी भर आता है।
1: लेकिन फिर भी आपने कभी हमारी दयनीय स्थिति पर
0: तो स्थिति इस प्रकार रही कि आइटम नंबर 2, 4, 6, 11, 12, 13 व 16 की कुछ मामूली कटौतियों से इस माह का घाटा पूरा हो जाता है।
1: इस स्वीकृति के

गंगा प्रसाद माथुर आकाशवाणी जयपुर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज

साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में समीर का लिखा गीत

0: के शरीर में होता है। मल्टीलिवर इंफेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ एक्सेलेंस या डॉक्टर, ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों पर
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं तो खाके तुरंत हो गए तो एसिडिटी की संभावनाएं काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर, जिनकी शायरी दिल के बन

0: शायद और गीत कार शकी राज ने
1: इन हालात पैदा कर दिए थे। हम स्कूलों में रात में काम करते और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना। मुल्क के सभी गाने के लिए क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक, उदित नारायण, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में समीर के बोलों के संगीत से सवारा है रिजु शाह ने

che fa il corno, si

बन जाती है।

चीज में क्या करूं। दिनेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, काम इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखी बस इसको हुक लाइन लिखते हैं। वो गाना करते करते हुक लाइन

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में वो गीत जिसे जिसे लिखकर

God will call you to something

कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बना दिया।

शेखावत ने कहा कि आधुनिक

से विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक के अध्यक्ष बैठे। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक वैज्ञानिक और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात मध्य

you know, just

Thank you.

decisions

0: जाने के बाद मुल्क के सभी गाने सुने, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है हर्षद जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का,

Spirit

幸福を祝福我们可以来一起。

शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन।

और

flow, there's many gates that I think will

कि बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। पद्म भूषण साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड है। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीण

लेकिन ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलैयाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहे, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि ये हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन

इलिया राजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत किया, वो थी पल्लवी अदु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्म का संबंध सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहन लाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1988 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलगू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई

2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

0: जैसे पेट की समस्या इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट किलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन यू रिक्वेस्ट टू गो टू द डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियों पर,
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता।
1: अगर आप टाइम से नहीं सो खा के तुरंत सो गए

उनकी है सामने और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ लोग।

भी उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिल जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं

समझ में आया है, हमने तो खोकर दिल को अपने

इसी सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया की भीड़ में मिला है एक हम कदम। तू मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला ले कदम से कदम। कभी कलियां सिले तो कभी गलियां मिले, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में संभाल लेना

तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार थे और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है। हर रोज तेरी

पद में मायने पकड़ के इस सास का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती है वो मुलाकातें जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ, तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

तुम्हारे दिमाग लगे हैं मगर बड़ा चीज वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लगाया जाए

0: घुमा रहे हैं मगर बड़ा अमीर नहीं है। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लगाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने इससे मेहनत की।
1: इनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को शुरू के अलौकिक संसार में ले जाती है।